0: चलिए और जो है वो पूरी देख रही हूँ इंदौर गजल की सिंगर
1: Nebeo, Yizan, Ingomanazo, Fatani.